साग सागमा पाइमा नि बुइनो अबा बुइ भाइ बाताई पाइमा नि सलाई कथर सामुङकुक तुम कुबि कुबिनो साग सागनो हामजा कांके नों बुइनो सातक पिताक मुंसा ख्लाइमाक लाग जेफ्रु फानो नों जेसेनो वांसुगो आपतिनो नों ओंनाय सालब्रुम फुङो जों गोदाल खे आजाय फिरो आबागिनो दिनै जों ताम ख्लाइ दं आबासे बेलाय नांगौ फांनि कक गोथार एबा सुनसक साग सागनिसे बारजा केबाथाय खरकसानो गोथार सनामै मानिया बेलायखे मोनाकनि हरनि ककनि ककमां ओंखा मुंसा सिया जेसा बलंनि मालमातानि स्लाय खरकसा खा सित्रा किचिंनोसे किरिदि तामनि होनबा मालमातानि साखनो देरारि मानो फिया खरकसा खा सित्रा बरक एबा किचिं निनि काहाम वानसंनि सिमिनानो फेरि हाइमा फासिं त्लां मानो काहाम साख मांनो कारै काहाम लांमा ओंमाइया खागमा बिनि तंमं थैमा बिनि मां साखथाय खानो काहाम तननि लामा ओंखा लाइजाक सालनि बागै खाता दैदि तै थिनांनि सालरकनि बागै आसक्त मानसुकदि बुद्धिते सुत्रं तं तंबाय दाबुंनि जराबो जायतुकदि थां दंनानै जेसा नखुंन जासाजाकताय साखाम तनानि ओंखांखे नांखौमानि पुइला रायदांखा रायदेव तंनानि तै खानि मुसुमान रखनो खातन नानि तमु जेसाबरक बिनि साग सागनि मुसुमा रखनो खातन मायाखे साग सागनि नांमा रखनो खालायदेरनो सिया जेबारक खातन नांखांखेनो ब साग सागनो रोगै सिमानि एलेम लामनो नायथुगै मानो निनि थानि जेसेक दंग' आबारकनो दै बनि थानि आसक्ता बलाय सादि তাই বনিনুকুই তা মুসু দি যে বরক বনিনুকুই মুসু বিনিখা হমনি নংসাং মানিয়া খরকসা বরক নিখা বিনি সয় সয় কিচিং এবা শত্রু অঙ্গ জেসা হাইম্যা মানই জেসা হাইম্যা বানসমুনি ফাইও যে বরক লাংমানো কাহামকে তংখা বৈনানি ব মূসা ক্রিয়া আসকরা সংহাই নখরঙ্গ খান লাগিয়া ক কাহামো তিনি গৌতম বুদ্ধদেব সাইকলামণি ককরক্ষা।

पल्टी बुक संफारिके हामी हाई चिनिङचिनी सालकामा पाण्डु एफएम जन्तेव फलाफिका फलाबनिसिका चन किसिसा हाइन हाई कैसा योगा नुतिन किसिसा खनालय न तबु योगा त मुबगासक नाङकोक मानि योगा साल त जुन तालने नैची सा साल मारे से पाले जाने फियाबा तबु सिमिन आबनि सका न चन नुगो तम योगा चिनी सिरिसि तिनि सिमिन आगि नि जुगनि

खिलाई दें मानो मैं याबो किसा खाली नहीं था वो है फिर उन्होंने वैसे को तब उसे नहीं या खाली बदल करी था ऐसे या खाली बदल इनके नंबर बस पर्सनली ये पर्सनली चाल या माने नुम बोरोक भाई को कोगदुक एबा पर्सनली कांटेक्ट खाये अब है के साले मानो तब और अंत है के साले कहेंगे ऐसी किसा खा पियांग था होता है बने नुम तब शायद खबला गिचिन ताकुक सॉन्ग को चिन ताकुक शेबा ब्रोतो सॉन्ग बोरोक खाने तुम रो हंगे बोरोक नुम नुम भी कांटेक्ट खाई नहीं मुझे किधा अब ऑटोमेटिकली आप लोग ना ये इनके नुम शायद खा वो तो बोरोक खाना कता तो अब बोला था शामरा हाँ ताकुक ऐसे चंग एआई नो खिबुई रिनानी कोकनो छाया मथागे रिनानी कोकनो छाया एंका स्पेशली चंग स्पेशली मा हनो ता नहिंकाय ताबुक जे कताल जुगनि चरारक बरक होमवर्क क्लाइने निंथुं एप्लीकेशन सिना निंथुं आ चंग बुचुबा चन हारु फियाबा चंग ताम क्लाइमान हनकाय चंग चुबा चुनाने नायमानो नाथुं ते अबहायके नामानो ल चंग सुयिनाय साक्साक ओलोबो जेफ्रु नांगो चंग साक साक आबनो सुरुंगिने मुइतो ख्लाइने सामगो थेपानाने ए आबो अंखा ओजन न तंगमाने ता बैलेंस चंग नाइ जे मोबाइल नि नाइ एबा एआई एप्स रोनि नाइ सुयै पाइ पवि थांगनि आमते हिंगेले आबो चिनि वान सुख फाने बा इंटेलिजेंट न कमिरि व हिंगे हम बगै चंग नाइ सुरुंगै सुयै ओलो साक साक बो सामगो थेपानाने आबो हाय हिंगेले चंग मेसिन रक चिनी जागान सेगे मानग्लाग एबा चिनी बड़ रकनी वान सुख फान्न सकमरे मानग्लाग गाबन फादी ताम कक सानी ताम सेनानी आबो जिन बड़ रक्से ए आई हामियाया बो कहान्न तामिके चिनी कहाम सामू गबांग खायो जों से बहाय के थेपा जों आबनो बसु जराती थेपा बसु गबां किसा खाय के थेपा आवश्यक कखे फरके तीन बागासन सिथिन जतनना फुंक हांतिसा जतनना हमबाय ते खाखलायो फबस्कानि सालरक करंगमानि करंगलाय हने हाइतिसा जतनना काम करंग तंगथं ते खनाय तंगनाय रक्न जतनना तेबो चंगबाय करंगि तंगलेहिनि साजाव आं बगि ताक्ष जरा ताउनि बागाम सुना सिथिन एफएम जनते सालकमा पांदा खनाय तंगनना पांदा आकाशवाणी अगरतला सारसा पॉइंट ऑफ मेगाहर्ट्ज़।

0: अक्षय नेतृत्व हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना अक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: টয়েড হেপাটাইটিস এ বা ডায়রিয়া জলবাহিত রোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে, কিন্তু একটু সচেতনতাই আপনার সুরক্ষা।
4: সবসময় জল ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধ করে পান করুন। শুধু পান করা নয়, হাত মুখ ধোয়ার জন্যও ব্যবহার করুন পরিষ্কার জল।

अचिं अचराव खनातोतोक रचाप मुंग खनालाइक्या शांति चिरानी खोरंग वाइके रचाप जाक रचापुंक उबो अचिं गारो बसंगनी रचाप जाक रचापुंक गारो कोक थाई बाइकै रचाप जाक हो रचापुंक नो खाख्लायन र खनातोक जाक बाइकना अंकै सांग्रो सालोचिं खासिकनी रचापुंक पांदाव हंके खनालाय ओबाहिनो जादुनी रचापुंक तै हबहाय हाचिकनी रचापुंक गोचिं खनालाय चिनी चिनी हास्तेओ जे गबांग मा कक साय दंनाय रक हायदा आबो उंगै मानो काइपें उंगै मानो मलसम उंगै मानो मारा उंगै मानो इको मारा रक्त आबो गारो खबजाखौ हायदाबा ग अबहाय गबांग मा कक थायबाय के रिसाब जाक रिसाब मुंग रक जों खनालायो हंकाय नरक ब खनाय दंदि लगि दंदि पांदा पाया साख जरा हंके फादि अजराव हायनो हाय तां साखना त तक रिसाब मुंग जों खनालायने कायपेन कक थायबाय के रिसाब जाक रिसाब मुंग नखनाय दंदि लगि दंदि पांदा पाया साख जरा।

रंगसा देश न कर विदेश थंग बरले देश तो यूं नो रंगसा रंगसा अपनी ले जाती बो करे मानी जाती बो करे नो जाके नहीं करे रंगसा rangsa rangsa rangsa

रोखणाईथोंगो 101.6 मेगाहर्स एफएम उज्जैन अजराव स्टूडियो आसुक्जा कांगारजे बिनोता अंके ताबुक चिनी स्टूडियो निजराखो गोतामुईथोंगो दीपुनी दामचिनी अंगै मुफली ची थामंगजा अंके अजराव नरक जतनोनो दीपर काहाम तेनो रोखने तीनी निशाल जतनी बाकीनो काहाम लाइनानी अंगथुन के ताबुक तो दिबर काविनो थांका ताबुक दिबर जरा रबो हंके जतनो किसामिसा लेंगला लायो ना जों लेनाव सामुं क्लाइमानि जों जिनि साखनबो किसा जरा रिना नांगो जिनि साखनबो किसा लेना रिना नांगो जों सामुं सिमिबो क्लाइ दंखैबो इंगियाबले ना जों साख मां गाहाम दंखा कायसे जों बेवाक सामुं खमुं रबो क्लाइ मानो हायनि बागैनो जों किसा लेना रानिबो नांगो जत बर रक्न जों पाइलायनि बिसिंगो पानो जों जत न त पाइलायानो सालब्रुम ब्रुम न सामुं क्लाइ दंना नांगो तामनि हिंगे जों जावै थांगै थांना नांगो जावै थांगै थांनानि बागैनो जों सालब्रुम न जत न खाफ्रमै सामुं खायो जिराय बहायनो परिलायो थिनांनो जों सासा गाहाम खालायनायनि बागै आबनि गायसा नुना हारमुं आबंखाजों गोथां दंनानै नांनायहाय देबा जों गोथां दंना हांखै जों जिरायनि सिमिनो चिनि वानसुमुं रबो जों सामुं हुमुं खालायना नांगौ दै चिनियाव वानसुमुंगौबो जों अबरकनो दैनानै नांगौ हांखा आबहाय खेनो जिराय रबो हायनो परिलायो परिनाय रबो हांखै रोंस्रोंनाय रबो हायनो रोंनो रबो थांगौ साना थांगा हांखै जतनो जानि जानि सामुं बाय पाइलाया जानि जानि सामुं खालायनानै न नांगौ हायदाबा हांखै खालायै दंमानि न दंमानि हायदा हांखै जों हायनो एरें दंखा हांखै थ' पद्र पद वानसुमुं फायो जराव चिनि वानसुमुंगौ नेगेटिभ फायो वानसुमुं सिद्रा रगौ फायो हांखै जराव चिनि खाबाय मानि खाबाई बतंगमानि जरा दंग ते आ अमहाय खाबाई दंगमानि जरा रगौ हांखे जों वानसुमुं रगौ हायनो पद्रे पद फायो ते इंग्ला खा अमहाय गोबां मा खाबाय मानि रग जरा रगौ दंग हायदाबा हायफानो जों बाथागै दंगिया ककायहायसे जों बाथागै दंगिया जों थांना नांगौ हिमना नांगौ जरा बाय बाक्सानो जों सामुं खुमुं रगौ खालायना नांगौ हांखाय हाजोंनि रोजाबुं बादो जों तेबो खोनालायनाय खोनाथ' थ' रोजाबुं हांखे फायदायाव जराव रांखल कक थायबाय रोजाबजा ख रोजाबुं नरक जतनि बागै

योगा नतै जों सारिमानो जुन तालनि बोसकां साल नैथिसा एबाखाबा बोसकां ककटेल साल हायुं योगा साल पालायजानानै बोखाक थाङै दङ बिसि बुरुम बुरुमनो सालनो पालायजागौ गाय जों मियाबो आबनतै आलायदा खायसा पान्दा थांखा अनुरो खोनाय मानबाय खोना बिनि खुबदै जे योगा फोरोंनाय योगा ट्रेनार बिनि खुबदै गोबां मा योगानि हामग्राय जिनि साग मां गाहाम तनि थानिबो योगा तामो तामो नां बोसोन जरतै सामुग जोंनो गाहाम ख्लायदनि आबरकनतै जों खोनाका ओंखाय अबाहायनो जों खोनाका जे योगा जिनि साग तै जिनि बोखानो स्रांग्रि तनिउ जिनि साग न' गाहाम तनि माबाय बाक्सा अब तमुंनो जों सालब्रुमनो जों बिसियो वासाया योगानि साल पालाय थानि आर सालो सिमिया जों सालब्रुमनो तमुंनो रायदातै योगा ख्लायगा गाखाय जिनि साकमां बेबाकनो गाहाम दंनाय जिनि बोखाबो गोस्रां ओंगै दंनाय बोखाबो स्राङै दंनाय तामो हिमालया जों जतन' सिउ जों दाबुकनि अजराव जतन' पायलाय हायदाबा ओंखाय फियाबा आं नरब्र' मियाबो साखा जों जिनि साकमां गाहाम दंनायनि बागै जों जिनि साग न' ओंया होनमानि फानो सति थामजिले जों जरा रुना नांगौ सति नैजिब्रैयाव हायादा जों जराव जों थौ जों हर' थौ जों जतन' थौ फियाबा जिनि साग मां गाहाम गायतनिनानि बागै जों जरा रुना नांगौ सति थामजि फानो ओंखाय जों योगा जिनि जे दाबुकनि अजराव जों जतन' खाफ्रुमजा खासिगजाक रां पैसा आजिनायनि बागै थिनांनि लांमानो नायथथक ख्लायना बागै गाहाम गायदननाय बागै बाक्साबा बोसाबोतैनि गाहामनि बागै खाफ्रुमजाक बोसाबोतैनि थिनांनि ककनो वानसुगै खाफ्रुमजाक ओंखाय गोबां मा वानसुक मुं फायो गोबां मा वाना मुं फायो दे दाबुकनि दं हालकनो दै नायनायखा ओंखाय हाथि रगो थांखाखैबो गोबां मा मानि रग मरग मानि जों नुगै दङ ओंखाय जिनि आजिमारि बुसुक दं आबरकनो नायिबो वाना मुं फायो गोबां मा वानसुक मुं फायो ओंखाय दाबुक हदानि ककनो वानसुगैनायखा ओंखाय हदारगो गोबां मा जाया जुगिया रग नुगै दङ ओंखाय गोबां मा जेराय रगनो लामा हामियाव हिमै दं मानि रग नुगै दङ फेक मुं रगो गोदाल जाग दं मा रग नुगै दङ दे जेराय गाय रगो देराखरो मानि रगबो नुगै दङ जों आबरक बेफाखनो नुगै गायसा वाना मुं दङ जत बरकनि न' ओंखाय आ वाना मुं रगनो हेलें हेलेंनो थानिबो योगा जोंनो बेलाय खेनो जुबावहाय जे ओंखाय आबु सिमिया जों दाबुक जों किसा हांखेनो बेलाय खेनो जलिउ कक सहिमानिया जे सानो पानो जों फाच्चा जलि थांगो फाच्चा थामजि फुनुगो फाच्चा जेसा फानो कक रग साजाकै ओं थांगो तामनि हिंखे जों गोबां मा वानसुक मुं दंमानि बागै वाना मुं दंमानि बागै आबुनि बागै जिनि सय मुं रगबो गोरै ओंगै दङ दिरुग दिरुग सय मुं रग बेलि दङ सय मुं रग बाय दङ एबा सय मुं रग सयमानिया ओंगै दङ ओंखाय अ सयमानिया ओं थानिबो योगा ख्लायखा ओंखाय अ सयमानि फानबो जोंनो बांग्रिउ हायनि बागैनो जों सालब्रुम न' सति थामजि फानो जों सति थामजि रिउ मानिया ओंखे एटलिस्ट सति जिबा फानो जों जरा रिउै योगा ख्लायखा ओंखे आबरकबहायनो दिरुग दिरुग सालसा ख्लायमानि बायद' ओंगिया जे सा सामुं फानो ओंथुन आब' सालसा बाय जों जा सामुं मानिया आब' जिनि आजिमारि फानोंथुन एबा जे सा सामुं फानोंथुन ओंखाय जों अ योगानि हयथे जों साग मां गाहाम तनि थानिबो सालसा बायसिमिथ' ओंगोला ओंखाय जों सालब्रुम न' आबोनो मैद' ख्लायै ख्लायनो नांगौ आबोनो गारिबो जों दाबुक साना थांखा ओंखाय जामुं नरुगै सागा ओंखे जामुं गोबां मा जों दाबुक मैखोदों थायखोदों रग बिथि बोराय गोनां जों मा जाव' ओंखाय दाबुक जराव' जों जायमानिया ओं थांगौ जराव' ओंखाय जरा रोगै जाया ओंखाय जों सावै मानो जिनि बहगौ गेस ओंगौ हायादा ओंखाय गेस ओंखा ओंखाय गेस दामनि बागै ओंखाय जों जेसामानि फोनो जागा ओंखाय जों दै हजम ओंगिया एबा हजम ओंगियानि बागै गेस ओंगौ ओंखाय अ हजम रग गाहामखाय जे ओंनानि बागै ओंखा ओंखाय योगा ख्लायनानै नांगौ फियाबा अबाबो जों सिना नांनाय बो योगा जोंनि हजमनो गोबां खाय एबा हजम खायनि थानि जोंनो जुबा आबरक जों बेबाग न' जों रमदि योगा

ट्रेनार नफनो जों सिंगै मानो हायाखै अमाहाय बिजाब रक मानथगो तामो तामो आसन दं दे योगानि तो गोबां मा आसन दं हायादबा हांगे बबो आसन चिनि तामो तामोनि बागै नां आबरक जों बेबाखनो नायिनो जों ख्लायना नांगौ ते जों चिनि जों जे साग फुंगै दं मानि आबरक नबो साग हिलगै दं मा रक नबो साग हेलेंदि थानि अमाहाय योगा रक ख्लायखै हांगांखै आबरक बो जोंनो गाहामखै तनि मानावहाय जेंखै फायदि अजराव हायनोहाय रिचापुं जों खोनालायनाय खोनाथ' दं रिचापुं नरकनि बागै खोनाथंदि लगै दंदि बालायनो खोनाथ' दं हर रिचापुं नरक चतनि बागै

0: Suman? Suman! Suman! Suman?
1: झोपड़ियों में ढोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मन्त्री दमेन्द्र प्रधान तिनी दिल्लीको ताल कुसुकबिरानी पान्दा हो जुन तालनि छाल्नेछि छाउ नै नीट युजी आमजमुङनि कुबुइटा सिराई सिराई खलाने बागै अफिसारङ दागिखा हास्ते हाफां खुकबार खलानेरनि हामक्राइनि बुसकां तनि होइ सामुतांनि टंगोखांनि साका मालमाता हामक्राइ मन्त्री सुदांशु दास छाल्छि छालका आरि आमचाइ रेलवेनि जेनेरल मेनेजर चेतन कुमार श्रीवास्तव तिनि हास्ते बेरामायाव फाग्या कक्तमा तिनि बागै अरनपाख्या उननि कक्तमा अवाइङनि खना फुं दामसिनि छति बृसि बाबा

0: साले।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: और संध्या,
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: संत कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेज

0: एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोबरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
7: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था।

0: को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: कानून के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।